ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए। तुम हमसे बदलते हो, तुम हमसे बदलते हो तो तुमसे भी कोई बदलेगा, तुम हमसे बदलते हो तो तुमसे भी कोई बदलेगा। यही बदला होता है हर बदल।

पछताएगा। जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, कोई था

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फिल्म दिल देखे देखो, उसी मशहूर फिल्म से ये सुंदर सुंदर गीत आप सुन रहे हैं। मन में विश्वास और संदेह एक साथ नहीं रह सकते।

हो साथिया हो बेलिया सुना दी आपको लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र ना लगे आपको, किसी की नज़र ना लगे, लगे तो बस लंबी उम्र की दुआ लगे।

सफ़र छोटा ही सही, सफ़र सफ़र छोटा ही सही, मगर यादगार होना चाहिए। और रंग काला ही सही, मगर वफादार होना चाहिए।

फिल्म ब्रह्मचारी रफी जी की आवाज़ में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, पर इसे साबित करने के लिए अपना समय मत बर्बाद करना।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म का नाम कारवां। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, हे ईश्वर जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, देकर और जो कुछ ले लिया है

जी करता है बस सुनते ही रहे कि जब से तुम्हें देखा है आँखों में तुम ही तुम हो। रफ़ी और आशा भोसले जी ने सुना दी फिल्म का नाम घराना, और इस फिल्म में जो अपना किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार जी और आशा पारेख। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है, कभी कभी खुद की अपने आप की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है कि हम वाकई में रुक जाते हैं, थम जाते हैं, सोचते रहते हैं कि हम क्या थे और कहाँ आ गए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। समय वक्त हमारे हाथ में नहीं है, देखते देखते हम बचपन से कब दीनार हो जाते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और दीनार होने के लिए भी बड़ा सौभाग्य होता है, हर किसी को ये नसीब भी नहीं होता है। तो आप एक नसीब वाला है, सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, जीवन हंसते में खुशियाँ में बिताते रहे, हर एक पल का जरूर से

0: रहे हो?
1: टीवी बंद करने, कुछ बातें करते हैं।
0: बैठो ना, कितना अच्छा गाना है। मैं भी ये गाना याद कर लेता हूँ। अगर तुम कहीं गई ना तो मैं भी

बेवफा जा, हमने तेरा वादा देखा, आपको सुना दी है ये सुंदर सुंदर सा गीत महेंद्र कपूर। और उससे पहले था हम जब सिमट के आपके करीब आ गए फिल्म वक्त से, पहला गीत जो आपने सुने वो फिल्म वक्त से, और दूसरा था जो महेंद्र कपूर के आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है। के लिए मैंने ये सुंदर सा गीत चुन कर रखी हूँ, ज़रूर से आप सुने।

सासे दिल छेड़ दे, इस सुंदर सा गीत हमको सुना दिए, हम फिर से एक बार देख ले। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी, फिल्म का नाम पासपोर्ट निकतीन इन एस एस तखमी, सुंदर सा फिल्म भी पिक्चराइज किया गया है।

आपने सुने श्री महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, और ये दूसरा भाग आशा भोसले जी की आवाज़ में। ऐसा है कि दो व्यक्ति ये गीत गाए हैं, और इसका मतलब है पहला जो था प्रश्न था, और ये दूसरा जो आशा भोसले जी ने गाई है ये पहला गीत का उत्तर है। यानी कि फ्राग है एंड आंतवर्त होता है। फिल्म का नाम जिंदगी और मौत के पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। Het leven heb ik geleerd. Voor elke zonsondergang is een nieuw begin. Jab sham ko surya ast hota hai, to iska matlab hai savera zarur hoga. Voor elke deur die dicht gaat, gaat er één open. Kahavat hai agar koi एक दरवाजा बंद करता है तो ऊपर वाला आपके लिए जरूर से कई अन्य दरवाजा भी खोल देता है। For Alec lived the end behind a new. For Alec end is er a new begin. जैसे कि एक रास्ता जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। जिंदगी चलने का नाम है। एलक फॉर ट्रैक इज एर अन अनकोम्स्ट। फॉर एलक फॉर ट्रैक इज एर अन अनकोम्स। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण, हम घर से निकले तो हम यहाँ आ गए, और यहाँ से निकलेंगे तो फिर घर वापस चले जाएंगे। फॉर एलक नीदरलाख इज एर रेफरेंस। रेफरेंस मतलब की तरह पाकन वराक नीमन, पर आप वराक ना लेना। वो खुद ही पाएगा जो जैसा करेगा। Nichts ist vollendet so lang Leben ist. Nichts ist vollendet so lang Leben ist. जब तक ये प्रकृति है चढ़ाव उतराव लगे रहेगा। इसे आप घबराना नहीं। और मुझे पता है कि आप घबराओगे भी नहीं, क्योंकि इवेंट खून इन स्टरक इन दिफिडू। आत्मा निर्भर आप में है, शक्ति है प्रभु के आप में।

सुन रहे फाव हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप और मैं चुन हूँ। आपको ढेर सारा प्यार मिले आपका फाव हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

दिल के सहारे आजा जरूर से प्यार करे, क्योंकि दिल से प्यार होता है और आपको सुना दे है देखे तो। आशा भोसले जी और पहला और आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी, फिल्म वक्त से निकाला गया, ये दोनों बेहतरीन गीत आपके लिए। और यहाँ से आपको हम बहुत से बधाइयाँ पेश करती हूँ पावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, अर्ज किया है रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल, बहुत

ये सुंदर सुंदर गजल आपके लिए पेश किया जाता है आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दर रोकन क्रेहिया मेर रिम्पल्स, दर रोकन क्रेहिया मेर रिम्पल्स तुर्लक, द रोकन वर्च हैत मिंदर इलेस्टिस। जी हाँ, आपने ठीक सुना, द रोकन वर्च हैत मिंदर इलेस्टिस दानास इसेत द दोर ब्लूडिंग इन द इन ये लिखाम ओक मिंदर खुद द रोकन वार दोर यो हैत एरफाक एरफालर खात आयत सीन। En sigaretten bevatten schadelijke stoffen. Denk aan

En als je toch drinkt, drink in ieder geval niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Hou 2 alcoholvrije dagen per week om gewenning te voorkomen. जैसे हम सूरीनाम में देखते थे तो बुज़ुर्ग लोग तो था जो खेत में काम करते थे शाम के वक्त में खाना के बाद तो वो एक पैक ज़रूर लेते थे और मेरे ख्याल से वो एक दवा के रूप में था। दवा के रूप में वो सब लेते थे दिन भर के थकान उतारने के लिए और वो भी उन दिनों में काफ़ी तंदुरुस्त थे क्योंकि काम करते थे समय से अपना पैक लगाते थे खाते पीते अच्छे से थे। हेल फेल लेखांस बख बेखिंग वारदर तुन op zo'n manier heb je dan ook minder kans op

मित्रों, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। और ये मन ही है मित्रों, ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता हुआ रहता है। अगर जीवन का सफल बनाना है मित्रों, तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन पर काबू करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये मत भूलिए।

मित्रों, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इस पर विश्वास कीजिए। और गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वही मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, बड़े दूर रहता है। मित्रों, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों,

मित्रों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा वो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग, मित्रों, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं है कि आप बुद्धिमान हो या कैसे हो, मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप बुद्धिमान हो। मित्रों, जो हम आपसे बातें बतलाते हैं, आप इसे हल्का में ना लीजिए, हवा में नहीं लीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश करना, तभी आपके बाकी जीवन जो है, तभी उसका और आनंद उठा पाओगे। अन्यथा वही घिसते रह जाएंगे हम। भले ही धन दौलत सब कुछ है, मगर पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर में वो खुशी है, हौसला है, कि कुछ खामियां महसूस कर रहे हो आप, कि कुछ कमती है अभी, तो यही है कमती। ज्ञान के सागर में से जितना पानी ले पाओ,

0: जितना ज्ञान ले पाओ लीजिए, वो सब आपके काम में आएंगे मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: भाई बहनों, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि स्वयं के पास सत्य को प्रकट करने का अपना ही तरीका है।

दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बहादुरी से भरा हुआ है मित्रों, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान करना हम क्या बतला रही है, सार्वजनिक बात है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मित्रों, तभी वे हमला कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए दोस्तों।

दोस्तों, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता। फिर से बोल रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखना, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। अपने विचार को पवित्र बनाओ मित्रों, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अनंत काल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है मित्र।

साथियों, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हाँ, इतना मजबूत बनो, स्ट्रांग हो जाओ मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। आपको है एक ऐसा मित्र, एक दोस्त कि सब खब्बू है, आए खाए पिए मस्ती में रहते हैं और प्रॉब्लम भाई तो भागे हैं जैसे हरना। नहीं, ऐसे इस तरह का दोस्त आपको नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं मित्र। आपका मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ये तो पता है मुझे। और ध्यान रखना इसको भी दोस्तों। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है।

विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनके घर पे नया बच्चा आए है तो उन्हें हार्दिक से स्वागत और बहुत सा बधाई आप परिवार को दिया जाता है। जिनके आज जन्मदिन है उनके भी बहुत बहुत बधाई दिया जाता है।

सभी जो अपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अम्प्रतख वर्ग दाखतुखवंस जो अपने स्कूल के तैयारी में लगे हुए तो उन्हें भी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए और ये कहना चाहूंगा हर बार की तरह कि माँ सरस्वती को बोलना नहीं बुद्धि और ज्ञान के बांटने वाले माँ सरस्वती को जरूर नमन कर लेना।

देश में सफर से आए हैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि वेलकम इन नीदरलैंड land vol met plekken waar je kan bezichtigen. Kunst en cultuur. Met mooie markten. Bruggen in Nederland. Mooie gebouwen langs Amsterdam en over het hele land. Maar jo Amsterdam mein kaha jata hai, unko dekhne ke liye log kitne deshon se aate hain. Langs de snelweg. इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर घरों जो हमारे देश में बनाया गया है जिनके आर्किटेक्ट ऐसा ऐसा काम करके रखे हैं उनके देखने के लिए बहुत से देशों से लोग आते हैं कुछ सुंदर सा घर जो नौ तौर में भी बनाया गया है जिनको देखने के लिए लोग अनेकों देशों से आते हैं Architect van Nederland. इसी प्रकार से हर एक शहरों में कुछ न कुछ है जो आप देख सकेंगे और जो सफर पे जाने वाले हैं उनके लिए ये कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे

निखिल वर्मा की आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों कहते हैं कि मंजिले मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरे जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

दो ही मकसद है मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। ये सुंदर सा भजन हम सुने सिंपाल खारल की आवाज में। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। आप सभी को एक सुप्रभात कहते हुए हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे। राधा नाम की माला गजेंद्र प्रताप सिंह और निखार जूनियर ने गाए हैं।

चाहते हैं कि जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, अध्ययन भी चलता रहे और दिया भी जलता रहे। सुना लो, हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

गाय ने केला देखकर और मुंह मोड़ लिया। सुनने वालों, एक महिला ने गाय के सामने जाकर फिर उसके मुंह में केला देना चाहा, लेकिन गाय ने केला नहीं खाया। पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ गए थे। जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने के हो गए। महिला डरकर बिना केला खिलाए चले गए। महिला के जाने के बाद पास खड़े एक सांड, जिसे हम बैल से जानते हैं, और पूछा, वे इतने प्यार से केला खिला रहे थे, आपने केला क्यों नहीं खाया और उसे डराकर भगा भी दिया? गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी है, आज एकादशी है, महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। वैसे ये मुझे कभी नहीं पूछती, गलती से उसके मकान के आगे चले जाती हूँ तो डंडा लेकर मारने को दौड़ती है। प्रेम से सुखी रोटी भी मिल जाए तो अमृत तुल्य है। जो केवल अपना भला चाहते हैं वे दुर्योधन हैं। जो अपनों को भला चाहते हो वो युधिष्ठिर है। जो सबका भला चाहते हो वो कृष्ण कहलाते हैं।

कि प्रार्थना सदा कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके प्राप्ति आभार व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए। Lieve luisteraars, een goede morgen toegewenst. और जो हमारे देश में सफर करने को आए तो उनसे ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे डनहाग शहर में जो मार्ग कहलाते हैं द क्रूडस्ट मार्ग फॉर यूरोपा 3 keer 450 मीटर लंग और जहां से दुनिया के हर एक प्रांतों से लोग वहां भी अपना सामान लेने को आते हैं। सुनो हम अगला भजन की ओर बढ़े।

कहते हैं कि जिसके साथ बात करने से ही खुशियां दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही अपना कहलाते हैं।

किसी ने अच्छा कहा है कि नया रोशनी, नया दिन, एक शुभ दिन आपको प्रस्तुत है। हैव अ ब्यूटिफुल डे। जो इस समय अपने कार में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें शुभ यात्रा कहा जाता है।

0: एक फिल्म जो बनाया गया 1973 में, जंजीर 1973 में बनाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, आपको पता है कि इससे पहले जब ये फिल्म बननी थी तो सब एक्टरों से पूछा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, राजकुमार, सब ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था जो एक्टर ने गाया,
0: यानी कि हीरो के लिए कुछ नहीं था,
1: हीरो के लिए गाना नहीं था, इसलिए सब ने मना कर दिया।
0: तो इसलिए सब ने मना कर दिया ये फिल्म को, और तभी अमिताभ बच्चन को और प्राप्त हुआ ये फिल्म करने को।
1: तो अमिताभ बच्चन को फिल्म मिली और फिल्म इतनी हिट बॉक्स ऑफिस में हिट हुई कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन नाम दिया गया।
0: उस समय पे एंग्री यंग मैन कहा गया अमिताभ बच्चन को।
1: हाँ जी।
0: सुनो वालों, हम एक और सलीम जावट का लिखा हुआ फिल्म जो हम सभी जरूर देखे होंगे, फिल्म का नाम शोले है, और उस फिल्म से एक गीत को और आपके लिए रखने के तैयार हूँ।

0: सुना लो जब तक है जान मैं नाचूंगी फिल्म शोले से निकाला गया और हेमा मालिनी ने खूब एक्ट किया ना बबली जी।
1: हाँ जी, और जब ये फिल्म बनी थी और उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी,
0: क्योंकि ये फिल्म लगातार 5 साल तक वहाँ भी उसके ऊपर में चला ना।
1: हाँ जी,
0: भारत में।

0: भी कुछ कहने वाले थे अभी कुछ पुरानी फिल्म के अंतर्गत।
1: हाँ जी जरूर, मैं बताने वाली थी एक दो जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी 70-75 में। एक हुई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी और एक थी सालिम जावेद जी की जोड़ी।
0: सालिम जावेद जी की जोड़ी, क्योंकि ये 2024 में सब दोबारा फिर एक दूसरे को मिलाया गया ना।
1: हाँ जी,
0: और ख़ास करके फिल्मी के अंतर्गत जिन्होंने बहुत सा बड़े बड़े फिल्मों मिल करके लिखे थे।
1: हाँ जी, इनकी फिल्में बहुत हिट हुई। ये फिल्मों में लेखक थे, राइटर थे, स्टोरी लिखते थे और इन्होंने शोले, जंजीर जैसी फिल्में बनाई।
0: ऐसे बड़े बड़े फिल्मों में और अपना यानी कि बनाए। हम फिल्म शोले का एक गीत की ओर बढ़ेंगे, सुनो लो।

फिल्म शोले से निकाला हुआ ये इंस्ट्रूमेंटल, और आप एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: सुनने वालों, एक फिल्म जो 1975 में बनाया गया, बबली जी ये किस दिन रिलीज किया गया था ये फिल्म जो 1975 में, और ये डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म का?
1: 1975 में जो फिल्म बनी उसका नाम था शोले, और 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी।
0: भारत में तो दुनिया पे सबसे ज़्यादा फिल्म जो कहा जाता है कि बॉम्बे में बनाया जाता है, एक साल में कुछ 600 फिल्में कहा जा गया है कि बनाया गया, तो ये देखा जाए तो एक दिन में 2 फिल्म भी और बन सकते हैं, पर ये बड़े बड़े फिल्म, आप सही कितने प्रकार के फिल्म होते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: जो बड़े बड़े फिल्में होते हैं तो उसके लिए डेट निकाला जाता है, और हर साल ऐसे 15 अगस्त को भी बड़े बड़े फिल्मों जो और प्रीमियर में जाते हैं। तो 1975 में ये एक बड़ा फिल्म था, रमेश सिप्पी जी ने बनाए थे ना।
1: हाँ जी।
0: कलाकार उनमें?
1: कलाकार थे संजीव कुमार जी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, और एक नया विलन आया अमजद खान।
0: उस समय के लिए एक नया विलन आया था अमजद खान।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है रमेश सिप्पी जी, उनको लोगों ने बोला कि आप नया विलन क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये फिल्म कहीं पिट ना जाए, आपको एक अच्छा मजबूत और विलन लेना चाहिए।
0: तो उस समय के बात है कि जब अजीत आदि जो विलन,
1: अजीत, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ,
0: ये लोग जो विलन का रोल करने लगे थे, पर अमजद खान के लिए ये एक नया रोल था जो जिसमें उसका नाम भी रखा गया था गब्बर सिंह ना।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के लेखक हैं, अरे सलीम जावेद जी, दोनों जोड़ी हैं जिनकी, वो कहते हैं कि हमने जब उनके गांव में, उन्होंने एक कहानी सुन रखी थी गब्बर सिंह, और सच्ची कहानी है, तो इसी के ऊपर उन्होंने गब्बर सिंह, अरे सुझाव दिया डायरेक्टर जी को कि विलन का नाम गब्बर सिंह ही रखना चाहिए।

0: और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर।
1: उस समय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और अमिताभ बच्चन जी उस समय सुपरस्टार बन गया था ना इसी फिल्म से, यानी कि सुपरस्टार का और जो जगह प्राप्त किए थे ना।
0: हाँ जी, लेकिन इनसे पहले उनकी फिल्म आई थी जंजीर,
1: जंजीर में जिससे पहचाना गया,
0: एंग्री यंग मैन
1: के नाम से पहचाना गया था। तो ये फिल्म शोले का और एक गीत और मैं कोशिश करूंगा रखने के,

0: क्या आपको पता है जब शोले फिल्म के पोस्टर लगे तो उसमें जो राइटर थे सलीम जावेद जी, उनका कहीं नाम नहीं था।
1: उनका कहीं नाम नहीं था तो क्या पोस्टर पे नाम लगाया जाता था उस समय पे?
0: हाँ जी, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, लेखक सबके नाम होते थे।
1: सलीम जावेद का नाम नहीं रखा गया था वो पोस्टर पे, और तो हुआ क्या?
0: तो फिर उन्होंने दोबारा से पोस्टर बनवाए और उस पर अपना नाम लिखवाया।
1: यानी कि पोस्टर पे अपना नाम लिखवाए ये सलीम जावेद का, रिटन बाय सलीम जावेद, ये सुंदर सा फिल्म जो 1975 में जाकर के रिलीज हुआ। और कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने ये बड़ा फिल्म बनाने का फैसला लिया था, पर उनका बजट कहा गया था 1 करोड़ था ना?
0: हाँ जी, उस समय में 1 करोड़,
1: उस समय के लिए 1 करोड़ बड़ा बड़का पैसा होता था।
0: बहुत ज़्यादा, अब भी ज़्यादा है।
1: और पर बनते बनते ये फिल्म बन गया था 3 करोड़।
0: हाँ जी, 3 तक पहुँच गई।
1: और 3 करोड़ हो गया था और ये फिल्म यानी कि बजट से बाहर को और खर्चा हुआ।
0: सही बात।
1: और शुरू शुरू में तो जब प्रीमियर पे आया तो डर गए थे कि ये फिल्म चलेगा नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर सब कहते हैं अच्छा 1 हफ्ते तक देख लो कि क्या रिजल्ट निकलता है।
1: तो हफ्ता बाद जब रिजल्ट अभी पूरा नहीं हुआ था, फिल्म बस फिल्म के डायलॉग के माध्यम से फिल्म खूब चल पड़ा ना।
0: हाँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें कि लोगों को कितनी, अरे घंटे लाइनों में लगना पड़ता था टिकट लेने के लिए।
1: कितने घंटे लाइनों में लगता था और टिकट लेने के लिए।
0: हाँ जी।

0: बड़ा बोझ है आप पर।
1: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
0: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
0: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
0: हाँ मौसी, अब ये कंबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: है तो क्या जुआरी है?
0: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
0: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है, अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
0: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
0: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ?
1: अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
0: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
0: क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूं, कोई सौतेली मां नहीं।
0: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।

0: सलीम जावद के लिखा हुआ डायलॉग मौसी का भी कितना सुंदर सा डायलॉग है ना बबली।
1: हाँ जी, मौसी जी का डायलॉग, और वो भी डायलॉग जो धर्मेंद्र टैंकी के ऊपर चढ़ के मौसी को गाली देते हैं।
0: ऐसे उसमें मेरे ख्याल से उस समय पे भी डायलॉग, सिर्फ डायलॉग से एक एलपी भी बनाया गया था ना, वो जो भारत में लोग खरीद सकते थे, वो सूरीनाम में नहीं आया था मेरे ख्याल से। तो लोग लाइन में खड़े हो करके, और सभी डायलॉग जो बनाया गया, जो लिखा गया था और जो आवाज़ में रखा गया था, लोग बहुत पसंद करते थे उस समय पे, और आज भी वो अभी तक लोग भी पसंद करते हैं ना।
1: हाँ, क्योंकि जब मर्जी हो तो डायलॉग सुन सकते हैं।
0: हम एक गीत और, यानी कि सलीम जावद के फिल्म, उसी प्रकार से उन्होंने फिल्म शान मेरे ख्याल से और बनाए लिखे थे।
1: हाँ जी, शान भी थोड़ी शोले की तरह थी, लेकिन वो लोगों ने इतनी पसंद नहीं की जितना शोले पसंद की।
0: शान उतना नहीं चला था मेरे ख्याल से
1: ना, शान से ज़्यादा दीवार चली थी। दीवार भी 1975 में आई,
0: दीवार फिल्म, वो भी सलीम जावद के लिखा हुआ, 1975 में वो रिलीज हुई।
1: हाँ जी, और वो ये एक्शन और क्राइम ड्रामा फिल्म थी।
0: एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म, दीवार फिल्म में भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों भी थे ना।
1: गीत भी थे, और ये दो भाइयों की कहानी थे।
0: दो भाइयों की कहानी,
1: हाँ जी, और उसके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए। और एक भाई इंस्पेक्टर होता है, और एक भाई, अरे बाद में पहले छोटे मोटे क्राइम करता है, फिर बाद में बड़ा चोर कह लो या कुछ ऐसे बन जाता है। यानी कि एक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, इन सब ने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, निरूपा राय।
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

सुनने वालों, ये फिल्म दीवार से निकाला गया ये सुंदर सा गीत उसी समय के बात है जब सलीम जावद का जोड़ी थे तो बनाया गया फिल्म शान, और फिल्म शान से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत मैं प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक जो मेरे हिस्से के कार्यक्रम हमने और आपके लिए प्रस्तुत किया, हमारे साथ दिए बबली आसरा जी भी और मैं हूँ आपका सेवक संजय, और यही आशा रखता हूँ कि आपका कार्यक्रम भी कुछ न कुछ रूप में अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे, नमस्कार।

रहेगा हम भी रहेंगे शायद। ये भेषभूषा में नहीं बल्कि हम पुनर्जन्म में फिर से वापसी आ जाएंगे।

ढल जाए मोहम्मद रफ़ी जी के सुंदर सी आवाज़ में, प्यार भरी आवाज़ में सुना दिए। इस बार है दिन है बहार के फिल्म वक्त से।

तेरा कोई और ना मिले क्या बात है, कि दुआ है कि तेरी मोहब्बत के सिवा कोई और ना मिले, जिंदगी में सिर्फ तू मिले, जिंदगी में सिर्फ तू मिले या फिर जिंदगी ना मिले। क्या गहराई है, क्या गहराई है ये शेर शायरी में।

0: सर झुक।
1: सच में कहा मैं भी कहती हूँ कि ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, जिंदगी में जैसे भी है बस मुस्कुराकर और आगे बढ़ते रहना। दुख जो आए तो पल में वो भी खत्म हो जाएगा।

मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए, मुझे हर सुखी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ, मेरी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई है कि दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई है, तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जाने की वजह, मेरे जीने की जाने तो नहीं बल्कि तुम्हारे पास आने की वजह बन गई।

क्या बात है, फिल्म गुम रहा से यहाँ से आपके लिए स्पेशल स्पेशल सभी लिसनर्स के लिए पेश किया गया है। और इस बार आपके लिए प्लेलिस्ट पर है कि दिल के देखो चेहरा को ना देखो, चेहरा

जहां जहां भूल जाते हैं हम, तेरे एक मुस्कान पर हम खुद को हार जाते हैं। लफ्जों में कहां, लफ्जों में कहो बयां हो पाता है, लफ्जों में कहां बयां हो पाता है ये एहसास। हाँ, हम लफ्जों में ये बयां नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं। तुम पास हो तो हर पल, तुम पास हो तो हर पल प्यार।

रात आपको हम यहाँ से सुनाए, देखो तो कहाँ आई, कहाँ चला गया। हाँ, वादा था सुनाने के लिए आपको कि दिल को देखो, चेहरा ना देखो।

बाकी में दिल सच्चा और चेहरा झूठा, फिल्म सच्चा झूठा से आपके लिए यहाँ से पेश किया गया है। ये दो लाइन आप जरूर सुने और इस पे थोड़ा से गौर करें और अपने आसपास में जरूर से ख्याल करना कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से मुस्कुराता है। ये हकीकत है। आप जरा अपना इर्द गिर्द में संगठन में बैठना, दोस्तों में बैठना, तो आप थोड़ा से ख्याल करना। ये बात सही है कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से

कह दो वही फिल्म से निकाल दिया गया है, फिल्म सच्चा झूठा। किशोरदास जी की आवाज में, किशोरदास जी की आवाज में कितना गर्मी है, कितना प्यार है, कितना एहसास है, वाओ। ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चार कदम साथ चले थे, हाँ सात कदम साथ चले थे, आँख खोली तो ख्वाब था। हाँ ये ख्वाब जो हम देखते हैं ना बैठ के आँख मूंद कर सोकर, कभी कभी हम जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं। तो जो आप ख्वाब देखते हैं ना मेरे दोस्त, कोशिश करना कि इसके हकीकत बना लेना। हाँ जो पॉजिटिव खदाखते हैं ना, दैट यू ऑली पॉजिटिव खदाखते व्हाट यू थिंक दैट दी मार इन फरफेलिंग कॉम। तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तू पास हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। तो सोचो आप कितना अहम है, आप में कितना, आप कितने पलांग रखे। और यहाँ से आपके लिए एक खूबसूरत गीत, सुंदर आवाज में, और फिल्म का नाम यहाँ से हम आपको बता देते हैं। फिल्म का नाम है ऊंचे लोग, और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 1965 में, हाँ मोहम्मद रफी जी के आवाज में फिरोज खान ये गीत को प्लेबैक की है। तो सुनेंगे हम कि जाग ए दिले दीवाना।

वेरी रोमांटिक गीत है अल्फाज से इनमें, और इनकी धुन जो है कितने रोमांटिक से ये गीत, रोमांस वाला गीत और रोमांटिक मूड में ये भी हमको सुना दी है। और ये कौन था? हाँ, मोहम्मद रफी जी के सिवा और कौन हो सकता है। से भी महंगी भावनाएं होती है मेरे दोस्त, कि समय से भी महंगी भावनाएं होती है, जो समझो उसी पर खर्च जरूर से करना। जो आपको समझे, आपके भावनाओं को समझे, उसी पर अपना जीवन जो है, जो पल है, जो खुशियां है, उसी पर खर्च करो। कहते हैं कि ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो। हाँ, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वह चाहे जैसा भी हो, बस तुम मेरे करीब रहो। और इस बार थे फिल्म जूली से, माई हार्ट इज बीटिंग।

वाओ, कितना सुंदर, कितना प्यार भरे गीत, तुम तो प्यार हो। कितने मिठास है ये सब गीतों में और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो इसमें सब रचाई गई है।

तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है, देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतजार है। जीवन साथी कब मिले ये पता नहीं और मौत कब आए ये भी पता नहीं, तो मैं कहती हूँ कि मौत का इंतजार मत करो, वो तो हर पल पे आ जाएगा। बात ये है कि अपना जीवन जो है उसे खुल कर जियो।

यही उम्मीद है कि सिर्फ दिल नहीं हम मेरी, बल्कि आपके दिल भी वैसे ही गाता रहे मेरे दोस्त, गाता रहे मेरे दिल। फिल्म गाइड से निकाल दिया गया है और ये फिल्म निखंती फैफन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है। और फिल्म गाइड के बाद बात आपको लेकर चले हम मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत पल में कि मेरी मन की गंगा और फिल्म संगम से निखंती फिरन सेस्तक ये पिक्चराइज

बात हुई ना कि होगा होगा और जरूर होना ही चाहिए संगम। मैं ये कहती हूँ संगम तो होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए ये भी समझ बूझ कर, और बंधन में बांधो मेरे यारो। सहेली हो यारो हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, सहेली है जो भी बंधन है, ये संगम जो है इसे समझ बूझ कर रिश्ता जोड़ो। फिल्म संगम से हाँ छलांग तो मार दी इस बार, चले सुने या हो।

या माय दोस्त, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जाए जा कहे, नेवर माइंड नेवर माइंड। और उसके बाद कि आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड से फिर

जी ले भैया जी ले, मरना तो एक दिन तो है, पर आज जो मिले हैं ये जीवन, बहुत प्यार के साथ ये जीवन हमें मिले है, मिला है। और ऐसे अभी कई अन्य शिशु को जन्म जो हुआ था है, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत है।

तो जरा इतना जल्दी जल्दी तो ना होना चाहिए। अजीब दास्ता, हाँ अजीब दास्ता है ये रिश्ता, ये सभी जो है कि हम कभी कभी ऐसे रिश्ते में पास पास में बैठे रहते हैं, और आजकल तो मोबाइल जो है ना पास पास में बैठे रहते, पास पास में सोते रहते, एक बिस्तर में सोते रहते, पर अजनबी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। मैं कहती हूँ समय के देखकर मोबाइल जो है ना वो कभी कभी अपने से दूर करके अपने

प्यार देना, नहीं तो एक ही छत के नीचे रहकर अजनबी की तरह जीवन गुजारेंगे। ये होता है तो इससे हमें बचना है, और उसके बाद बस ये

जाने वाले गीत आपको सुना दी है लता जी, और फिल्म का नाम, जी हाँ आप हमेशा पूछते हैं कौन सा फिल्म है, तो ये फिल्म का नाम है जो आपने सुने, मैं भी सुनी दिल लगाकर और सुनी, फिल्म का नाम असली और नकली। मेरे दोस्त असली और नकली नेखन तीन ट्विंस, ऐसा कि ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ कौन असली है कौन नकली है ये समय के अनुसार सब पर्दे से बाहर आ जाता है। असली नकली के बाद चलते हैं सुनने के लिए फिल्म काला बाजार से, और 2 साल पुराना गीत है, और ये है नेखन तीन सस्ता के, हाँ नेखन तीन तीन सस्ता के बाद 2 साल पुराना नेखन तीन सस्ता के काला बाजार से निकाला गया है ये गीत।

गीत चलाना कितना आवश्यक थे मेरे दोस्तों, कि खोया खोया चांद कितना रोमांटिक गाना, बस आपके लिए सिर्फ आपके लिए पेश हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। उसके बाद हाँ, 5 बरस और पुराना हम आपको गहराई में ले चलते हैं। जितनी गहराई में हम जाएंगे उतने ही चमकदार हीरा हमको मिलेगी। इस बारे प्यार हुआ, इकरार हुआ, सिर्फ 420 में से।

ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਆਪਸੇ ਬਤਾਏ ਫਿਲਮ 420 ਪੇ ਨਿਕਲਤੀ ਫੈਫ ਤਕ ਮੇਂ ਯੇ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੁਆ ਫਿਲਮ गीत मैं अभी रोकती हूँ, ये बात आपसे कहना है इसलिए मैं रोक रही हूँ ये गीत। Let up your manner, hurry up your ways। हाँ, अपने ही ढंग से अपना रास्ता कायम करो। तो मैं बताती हूँ चार ऐसा जैसे आप सोच सकते हैं और जैसे चार किस्म के लोग हैं। तो पहला है जो ड्रोमर है, हाँ वो सपना देखते हैं। तो अगर ड्रोमर को सुनिए जी, अंद्रोमर कैक नार मोखलक हेदन, अंद्रोमर कैक नार मोखलक हेदन एन एरफारिंग एन स्टर्क काउंटन फन अंद्रोमर डिजाइन से सैन क्रिएटिव verbeeldingskracht hebben ze en reflectief zijn ze en ook nog gevoelig voor ervaringen. Ze allemaal sterke punten hebben. En de valkuilen van het dromer die zijn blijf hangen. Blijven hangen in hun ideeën en moeite hebben met keuzes maken, ook nog verlies in focus. Dat zijn de kenmerken, sterke en valkuilen van een dromer.

के लिए चुन चुन कर और लाया जाता है आपका साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे दोस्तों। सही टाइम पे सही गीत चलाना कितना अच्छा लगता है और हम उसमें डूब जाते हैं, यादें जो है ताजा कर देते हैं। एर कॉम्प्ट अ मोमेंट दा चेनित हार दरखात फेख्तन, ये बात तो सही है। दर कॉम्प्ट अ मोमेंट दा चेनित हार दरखात फेख्तन मार तेलर खात लॉस लातन एंड लॉस लातन दैट इज सेर बलांगरेक द फरलिख्त ई खात अन हेले अंदर गफूलंस

यह टाइटल गीत आपके लिए पेश किया गया है जो 1985 तक में पिक्चराइज किया गया है। आज के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है मन्ना दई जी, रफ़ी जी, मुकेश जी, लता जी, आशा जी। हाँ जी, सभी जी, यहाँ से हमको

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इस हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर भर गिर ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत खुशी खुश रहो तू सदा, ये दुआ है मेरी पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: और कीजिए कि दिल से निकली हुई शायरी की कुछ बूंदे बरसा दीजिए, तभी रंगीन महफिल में बहारें आ जाएंगी।
2: इस मौके के लिए मेरे पास कोई कला नहीं है।
1: वाह साहब वाह वाह वाह वाह वाह, सुना साहबान, हमारे शायरे आजम फरमा रहे हैं
3: इस मौके के लिए इनके पास कोई कलाम नहीं
1: है।
2: अजी अपने चाहने वालों को आप कुछ भी सुना दीजिए, हम समझेंगे कि आपने हमारी शादी का तोहफा दे दिया।

ये भी होता रहता है प्यार मुझसे और शादी एक दूसरे से। जब जीना है तो फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। किस्मत से मिली है ये जिंदगी, किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद भी हंसो औरों को भी हंसाते रहो। की बार मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, माइटी मुकेश की आवाज में।

अपन हर सॉन्ग क्या हो तेरे वाला डर भर गीत के प्रोग्राम में अब की बार घुंघरू के तरह बजता ही रहा हूँ मैं किशोरदा के आवाज़ में।

साथ साथ जो खेले थे बचपन में, साथ साथ जो खेले थे बचपन में, वो अब सब दोस्त थकने लगा है, वो अब सो दोस्त थकने लगा है, किसी के पट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगा है, सब पर भरी जमींदारी है, सब कोई छोटी मोटी कोई बीमारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है, दिन भर जो भागते दौड़ते थे सब धीरे धीरे चलने लगा है, उफ क्या कयामत है, किसी की लून की फिक्र है, कहीं हार्ट अटैक से शिकर है, फुर्सात को सबकी कमी है, आंखों में अजीब से नमी है, कल जो प्यार के खत लिखते थे, उफ क्या कयामत है, सब दोस्त थकने लगा है, देखकर पुरानी तस्वीर आज जी भर आता है, क्या अजीब सा ये वक्त है, किसी तरह गुजर जाता है, कल का जवान दोस्त मेरा आज अंधेरे में नजर आता है, कल की ख्वाब सजाते थे जो आज गुजरे दिनों में खोने लगा है, उफ क्या कयामत है, सब दोस्त थकने लगा है।

क्या हुआ तेरे वाला दर्द भर गीत ब्रोकनहार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। जैसे मैंने वादा किया दोस्तों, तो ब्रोकनहार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम के बाद सितारों का सफ़र आप सुनेंगे, और सितारों का सफ़र में आज के प्रोग्राम में आप नंदा के बारे में कुछ बातचीत होगा।

फिल्म एक्ट्रेस नंदा की जन्म 8 जनवरी 1939 निगरी महाराष्ट्र मुंबई में हुई। नंदा के पिता का नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था, उन्हें मास्टर विनायक के नाम से लोग बुलाते थे और वो एक सक्सेसफुल मराठी एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। और उनकी पत्नी यानी नंदा की माँ भी एक एक्ट्रेस थी, उनकी नाम मीनाक्षी थी। नंदा के पिता की मृत्यु 1947 में 41 साल की उम्र में हुआ, जबकि नंदा 8 साल की बच्ची थी। और ये घटा घटी थी इंडिया के आज़ादी के कुछ दिन के बाद। नंदा अपने घर में 7 भाई और बहन में सबसे छोटी थी। इस तरह नंदा को पिता का प्यार बहुत कम मिलते थे। इसके बाद नंदा की परिवार बहुत मुश्किल में पड़ गया। 1978 तक में नंदा 9 साल की उम्र में पहली बार बीबी नंदा के नाम से फिल्म मंडिल में आए। नंदा 1978 तक से 1975 तक बीबी नंदा के नाम से फिल्म में काम करती थी, जैसे कि फिल्म मंडिल, जग्गू, अंगराई और जगदी थी। नंदा दोस्तों नंदा ने शशि कपूर के साथ फिल्म जब जब खुल में काम किया और उसी फिल्म का एक सॉन्ग आप सुनेंगे।

नालंदा के अंकल फी सीताराम ने निहरी 56 में अपनी फिल्म टूफा और डिया में नंदा को काम दिया। निहरी 56 में फिल्म भाभी में नंदा फिर पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई। फिर इसके बाद फिल्म काला बसार में भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई और फिल्म धूल का फूल भी एक अच्छी फिल्म थी। निहिर फेस्टक में नंदा फिल्म छोटी बहन में एक अंधी लड़की की रोल बहुत अच्छी से की। इस फिल्म में नंदा बलराज सहनी और रहमान के छोटी बहन थी। फिर इनस शेस्तक में नन्ना देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में होफ रोल का काम किया। इसके बाद फिल्म तीन देबिया में भी अच्छी काम किया और बे एच छोपड़ा की फिल्म कानून में भी काम किया। नीहिंदी शेस्तक में नन्ना फिल्म आचल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई। नंदा राज कपूर और पद्मिनी के साथ फिल्म आशिक में भी अच्छी काम किया। नंदा ने फिल्म गुमनाम में मनोज कुमार के साथ काम किए और उसी फिल्म का एक सॉन्ग

नंदा रजनी कुमार के साथ तीन फिल्मों में काम की, निहरी सेशन 5 तक में, तूफा और दिया निहरी सेस तक में, कानून और निहरी इन सेस तक में, ढोल का फूल। नंदा शशि कपूर के साथ भी कितने फिल्म बनाई, निहरी इन सेस तक में चार दीवारी, निहरी ट्विन सेस तक में मेहंदी लगी मेरी हाथ, निहरी फेफन सेस तक में जब जब फूल खिले, सेशन शस्तक में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी, निग्न शस्तक में राजा साहेब और निग्नि सी फिल्म तक में रूठा ना करो। निग्न फेफन शस्तक के बात है कि फिल्म गुमनाम को जिसका गीत अभी मैंने पेश किया, इस फिल्म में मनोज कुमार के साथ अच्छी काम किया। नंदा धर्मेंद्रा के साथ फिल्म मेरा कसूर में काम किया और फिल्म आकाश, निहरी निहन शस्तक में राजेश खन्ना के साथ फिल्म इस्तफाक में बेस्ट एक्ट्रेस के प्राइज पाई, और निहरी सीफतक में फिल्म द त्रीन और निहरी त्वीन सीफतक में जोरू का गुलाम में भी अच्छी काम की। नंदा फिर जितेंद्रा के साथ फिल्म परिवार और धरती कहे पुकार के इस फिल्म दोनों फिल्म में काम की, संजय के साथ फिल्म बेटी और अभिलाषा में भी काम की। नंदा अपने सहेलियों के कहने पर फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई से शादी की या करने वाली थी, लेकिन अभी गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा।

नंदा नंदा अपने सहेलियों के कहने पर फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ शादी करने वाली थी, जो नंदा से उम्र में बड़ा था। मगर शादी से पहले मनमोहन देसाई की मौत अपने फ्लैट की बालकन से गिरने से हो गई। इस घटना के एक साल पहले नंदा की माँ की मौत कैंसर द्वारा हुई थी। नंदा बॉम्बे में कुछ परिवार के बीच रहती थी। नंदा के कुछ करीबी सहेलियों भी थी, जैसे वहीदा रहमान, आशा परेख, हेलन, सायरा बानु, मारासीना, शकीला और सबीन जलील। दुख की बात यह है कि नंदा की मृत्यु 75 या फेफड़े सीफन तक साल की उम्र में फेफड़े मार्च 2014 को मुंबई वोरोशोवा रेसिडेंस में हार्ट अटैक से हुई

तारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। दिल में क्या है, आप फिर फिल्म जरूर देखोगे। जितेंद्र और मुमताज दोनों का फिल्म जिगरी दोस्त का सॉन्ग आप सुनेंगे।

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोपेयर्स
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है।

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बांट लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात कली तो वादा किया है, एक बार फिर ख्वाब में आने को दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा। रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है, लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपरमार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

इश्क प्यार का नखमा है, प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया के आवाज में।

0: की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है ये सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार किया। अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब।

आप सुन रहे थे शीघ्र होता है जब कयामत का। अदवाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। रुक जा ऐ हवा, लता जी आपको सुनाने वाले हैं। ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं। फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्क इसे मस्ताना।
1: ए नर्क

अभी आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका। फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को ना ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ, मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हो।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या दिन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम का बताओ,
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा।

0: किस लिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा, आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं।

यहाँ पर सुन रहे थे दिल की गली। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं उसका बोल ये है, तेरे बिना ये दिल।

अभी आप सुन रहे थे मेरे रहनुमा, तेरे इश्क की गलियों से आप सुनेंगे सुने वालों।

अभी आप सुन रहे थे तेरी यादों में। चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, दियो तेरी यादों में।

अभी आप सुन रहे थे दिल तेरी यादों में, एक सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, तूने नजरें झुकाई तो क्या हुआ।

पर सुन रहे थे मुझसे खफा। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल तेरे साथ।

मत हो उदास, मैं हूँ तेरे पास हमेशा हमेशा। भी आप सुन रहे थे शान जी की आवाज़ में। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं कुमार सानू, आपको सुनाने वाले हैं।

फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए है बड़ी उदास है जिंदगी कोई तो साथी चाहिए, कुमार सानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खूबसूरत से हम पेश करते हैं सुनने वालों कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति आपको सुनाने वाले हैं। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज़ में भी आप सुन रहे थे मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में तू माने या माने है तू ही मेरे अपनों में। जमाना दीवाना है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, क्या पेश करने वाला है बताओ क्या।

One of my favorite song, अभी आप सुन रहे थे, मैं अगर प्यार करूंगी किसी से, it will be कसम से, forever and ever भी आप सुन रहे थे, from the movie जमाना दीवाना से हमने पेश किए हैं। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, जीत है फिल्म का नाम, सोनू निगम और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरे बाहों में हो। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और जरा सा हम देखें तो ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शर्ली जी के लिए। और शर्ली जी जबकि हमारे प्रोग्राम को भी सुन रही है तो वो क्या कहती है, खुद मोरखसात प्रख्त हमोय लीचिस और एक सित लेकर इरफान तखनीतन एंदर आदि उस्ताद हार्टान। तो शर्ली जी आप ही के नाम ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं, कोई मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है।

आप ये सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है। आपको सुनाने वाले थे कुमार सानू के साथ में अनुराधा भारद्वाज जी, और ये गीत हमने पेश किया है शूली जी के नाम, जबकि शूली जी हमारे प्रोग्राम को सुन रही है। फिजा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से आप सुनेंगे दिल में रहना और इंतजार कर।

0: BGL Reizen, driedaagse Londen toen live in concert met Jubin Nau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. Driedaagse Londen toen BGL Reizen live in concert. Live in concert, Jubin Nau Teliale. Dag 1 Zoudhaal, dag 2 Jubin Nau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op Stadplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hari kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-36-522-47. Meer info www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

कुदरत कहे करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज न भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और आभार। सो हर की ओर देखता हूं तो 4:04 बीत गया है। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। शुक्रवार है, अक्टूबर के 2 तारीख, और यहां से आरंभ होता है प्रोग्राम गीतों का संगम। पूरे 6 बजे के प्रोग्राम जारी रहेगा। अब से लेकर 4:30 मिले जुले गीतों के साथ आपका दिन बहलाऊंगा। उसके बाद 4:30-5 के अंदर आइटम बयान जो रहेगा वो है मुझे, हर गीत जो मुझे सुरोता, लगभग 1.5 घंटे तक आपके लिए मैं पेश करूंगा। प्रोग्राम में छोटे छोटे खबरें, फील बरिख्त, मौसम के समाचार और स्पोर्ट बरिख्त आप सुनते रहना। बजे के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम चलेगा दोस्तों, खासकर उसका न्यूज बरिख्त जो है आप जरूर सुनते रहना। शुक्रवार है, वीकेंड भी है, जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। जन परिवार घर में दुख है दुख में साथ देते हो, जहां पर खुशियां है बहुत से बधाई पेश हो। देश का सबसे बड़ा बाजार जो है हाक स्मारक खुला हुआ है दोस्तों। अगर आप बाजार पे चल रहे हो या बाजार जाना चाहते हो तो हम आपसे ही कहना चाहते हो कि अपन ऐखा दोनों जो है शराब बचाए के रखना, इसलिए कि बाजार पर बहुत से साकर रोलर घूमता रहता है।

हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 से 5 तक 3 से 5 2 2 4 0 हमारा तार का नंबर

दिल दिल दिल दिल दे जाओ, उसके बदले जान ले जाओ, क्या बात है। दिल के बदले जान भी मिल जाता है दोस्तों, इतना इतना मकलक है, हम लोग कहते हैं इतना सही है कि दिल दे दो और ऊपर उसके बदले आपको जान मिल जाते हैं। ये होता रहता है। फाह हिंदुस्तानी रेडियो का शाम का प्रोग्राम गीतों का संगम आप सुन रहे हैं।

घर की ओर देखता हूँ दोस्तों, तो साढ़े चार का वक्त है। आइटम को शुरुआत में करता है और आज शाम का आइटम जो है वो है मुझे, हर एक गीत जो मुझे शुरू होता है लगभग आधे घंटे तक मैं आपके लिए पेश करूँगा। आपको सिर्फ तार करना है, दो तार का नंबर में देता

और ये सॉन्ग हैंगलोक के रहने वाला श्रीमान चंद्र रघुनंदन और साथ ही साथ उनका जीवन साथी नैली एक दूजे के लिए ये गीत पेश है।

मुझे प्यार के जिंदगी देने वाले श्रीमान चांदर रघुनंदन और जीवन साथी नैली एक दूजे के लिए गीत को मांग किए थे। इस वक्त फवका मुझे इश्क है तुम्ही से श्रीमान आंद्री राजकुमार जो शहर लेवाडर में रहता है उन्हीं के पसंद।

श्रीमान आंद्रे राजकुमार जो ले वार्डन में रहता है उन्हीं के लिए स्पेशली सॉन्ग पेश था दोस्तों। छोटा सा स्पॉट ब्रेक था, रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल का इंटरनेशनल है वो पुर्तगाल और डेनमार्क से मुकाबला से होने से पहले कल मुकाबला था दोस्तों, लेकिन एक रोज पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रेनिंग काम छोड़ के चला गया। पता नहीं क्यों चला गया है, लेकिन क्रिस्टियानो ने कहा है कि अपन फैंस से आने वाले दिनों में जरूर खबर करेंगे कि क्या कारण था कि ये फुटबॉल का मैदान छोड़कर चला गया। और स्पोर्ट बरिस्ता

U fun wessejri kella għajar stolli ta' Ondri għandura nil, Arkantini jifir Bolifja nil, kalke batħe obiska, obiskan fir għaw Sirje in. Għad kella għajar subha, sejt Korea nil, Venezuela nil, or an ormukabla kaldra hegad subhi, Tunisia tiken Mali, और खास बात यह है ये आपसे मैं बताना चाहता हूं कि कल जब शनिवार है तो इंडिया का फुटबॉल टीम जो है वो ब्राजीलिया से मुकाबला करेगा और पता नहीं है कि एक खेल किस तरह से होगा लेकिन अगर मुझे समय रहेगा तो खेल मैं जरूर फॉलो करूंगा आशा है कि आप भी एक खेल जरूर देखेंगे उसके बाद रसला नामीबिया कनाडा पेरू और फ्रेंस्टाट मेक्सिको से मुकाबला करेगा और फुटबॉल का मुकाबला हुआ है दोस्तों और होने वाला है मैं आपसे बताऊंगा कल के बाद है नेशन लीग का मुकाबला हुआ है और क्रिकलान नीदरलैंड से खेला है यह खेल ट्वी में एंड हुआ लेकिन पॉस जब हुआ तो उन समय पर क्रिकलान का ट्वी दुर्पिंड था अनिदान का नल दुर्पिंड फिर नीखन फेस टेक्स मिनट में फंदाइक एक बाल स्कोर किया और नीखन तख टेक्स मिनट में रेंडर्स ट्वी ट्वी एक खलाइक स्पेल बनाया और दोस्तों बात यह है कि ट्वी दुर्पिंड जी हाँ ट्वी दो दुर्पिंड नीदरलैंड का अफकर हो गया है पता नहीं कि ये बेट स्पेल था या नहीं लेकिन दो दुर्पिंड अफकर हो गया है और स्पोर्ट बरिस्ता है

श्वम्बर का सॉन्ग आशा के लिए पेश था, जो रैसक में रहती है आशा, युवत हार्तलक पदंत। एक आखिरी सॉन्ग चलेगा ये आइटम में, और गाना का बोल है, मुझे एक पल चैन नहीं आए। क्या बात है दोस्तों, कैसे हुआ कि चैन नहीं आता है? कहते जहाँ प्यार मोहब्बत हो जाता है वहाँ कभी कभी भूख नहीं लगता, नींद नहीं आता है, अब चैन भी नहीं आता है।

0: बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो बस तुम रहते हो।
2: अभिजीत एन अलका याग्निक दोनों की मीठी आवाजों में तुम दिल के धड़कन में रहते हो, क्या बात है दोस्तों। ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। ना इतनी ना तुम इतनी हसीन होती सरना सरगम। And we know that thought.

तुम इतनी हसीन होते। दोस्तों अभी 6 बजे के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनेंगे और खास करके उनका न्यूज बुलेटिन जो है आप जरूर सुनते रहना। फिल्म राज, यह एक पुराना फिल्म राज था और ये नया फिल्म राज का सॉन्ग है अभिजीत एंड अलका।

दोस्तों दोस्तों सेक्स वर्कर्स, आप जानते हैं डुबलत सरात और खलीन सरात देन हक में दो जगह पर सेक्स शॉप्स है, वहाँ कारोबार होता है, लेकिन ख़ास कर जो डुबलत सरात है वहाँ पर बहुत उफलास होता है। खमीन ने कहा है कि ये उफलास के कारण ये अब फैसला करता है कि आने वाले दिनों में जो राम प्रोस्टिट्यूट्स वहाँ पर होता है उन्हें बंद करने को और सिर्फ खलीन सरात में खुला रहेगा। तो देखा जाए ये बात आगे जाता है या नहीं। नया सॉन्ग जो मैं चुना हूँ वो है मुझे दोस्ती करेंगे, फिल्म का नाम है, ऋतिक रोशन एंड रानी ने काम किया है फिल्म में, सोनू एंड लता दीदी दोनों के आवाज़ में आप सुनेंगे जाने दिल में। दूर निगाहों से मेरे जाना न करो, दूर निगाहों से मेरे जाना न करो, ऐसा मुझे तरपाया न करो। मिलने को बहुत चाहत है, मिलने को बहुत चाहत है, लेकिन मिलने के बाद जुदाई से डरता हूँ।

अरब से पहले हो तुम दोस्तों। नॉर्थवेक का लेवन हॉर्स होटल, लेवन हॉर्स जो है नॉर्थवेक में, वहाँ पर ब्रांच मैनेजर आया। बात यह है कि टेक्निक दिन फैसला किया कि देखा कि कैलर में से धुआं आ रहा है, और बात यह है कि वहाँ पर कैलर में एक मोटर था जो जिन्हें लकाशे था, तो इसी कारण धुआं होटल के अंदर आ रहा था। तो लगभग 400 खास को बाहर निकाला गया है। ये हुआ है नॉर्थवेक का लेवन हॉर्स होटल जो है। दिस अ न्यू सॉन्ग।

20 मिनट रह गया है 6 बजने में, 24/7 आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, और आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम। सॉन्ग अगेन, तेरी यादों में इट इज ए रोमांटिक हिंदी लव सॉन्ग।

हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे फिर सी फतार का नंबर है, अपन अखेंडा में लिख कर और रख लीजिए, आज नहीं तो कल आपको जरूर काम आएगा। दोस्तों, मौसम तो अच्छा है, वीकेंड भी है, और बहुत से लोग हैं जब वीकेंड होता है तो परिवार घर जाते हैं या किसी पार्टी पे जाते हैं, फरियार ओसो वगैरह वगैरह खाना पीना होता है, वो भी होना चाहिए और होता रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे कार से जाने के और शराब पीने के, तो एक बॉब को साथ ले लेना। आप जानते हैं जब रेलवे चला जाता है, जब सिपाही रेलवे ले लेता है, तब बहुत मुसीबत, वो लोग सोचते हैं कि बूते मिलेगा, बूते के अलावा जो कोर्सेस वगैरह वगैरह आपको करना पड़ेगा, वो सब मुसीबत के बाद समय लगता है दोस्तों, और बहुत मुसीबत रहता है। तो इस बात पे सारा से ध्यान रखना, एक बॉब को मत भूलना, हमेशा साथ ले लेना।

104 बेस आपका सेवा किया। आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को यह प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। जो प्रोग्राम को सुना या प्रोग्राम में तार किया उसको मैं बहुत धन्यवाद या शुक्रिया कहता हूँ। वीकेंड है आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। वाला बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे धर्म कर्म फाहन हिंसा रेडियो का सुबह के भजन कार्यक्रम लेकर मैं स्टूडियो में उपस्थित रहूंगा।

में जलते रहे। क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है? और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते है।

कला जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। अभी आप लोगों ने द्वारका से एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना, हमारे कोलेगा साथी राजन द्वारका से। दोस्तों यहां से हम प्रोग्राम को ऑफर लेते हैं 6 से 7 बजे लेकर सूरीनामी न्यूज, उसके बाद में कुछ मिली जुली गीत आपको हम सुनाएंगे और तार करने के लिए आपको भी मौका मिलेगा एक गीत मांगने को, ये आपको हम बता देते हैं। और आज ही शुक्रवार फ्राइडे 8 अक्टूबर हो चुका है, घड़ी की ओर देखा जाए तो 6 मिनट ऑफर सेस हो चुका है। इस वक्त हम लाइव रेडियो फोन माध्यम से अपना प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों हम एकदम चलते हैं, एक ही दम चलते हैं, और कहां चलते हैं, सूरीनाम की ओर चलते हैं, हमारे दोस्तों हमारे यारों।

अबू धाबी से उड़ल भैया ओ कना फ्लाई दुबई से, फ्लाई दुबई से और उफ्लिक्टेक में उफ्लिक्टेक जात रहा इसराइल में। हाँ जनता, इसराइल में उफ्लिक्टेक जात रहा जेमा होंदर फेफ्तक को खाली इसराइल के आदमी रहा। उतरे में भैया फ्लिक्टाइक उड़े जा है फ्लाई दुबई और प्लेन उतरे में नीचे गिरे लगल है और कॉकपिट तू जाने जहां पे पिलोट लोग बैठे हैं कॉकपिट भैया उताला रहा और ओमा से चिल्लहट मचल है को लड़का सुनी से और चिल्लहट मचल है तो आदमी ये दौड़ल उतरे में कवाड़ी कॉकपिट के खुल गए है और जब भीतर में गईल हैगा आदमी लोन जो पचशीर से चार गो हेल्थ भैया और गईल है तो देखे एगो पिलोट खून में लथपथ है एगो पिलोट और वो पिलोट के छुरी लगल है चारों बगल खाली खून और एक वो पिलोट वो खाली मांगे हैगा प्लेन वार्स स्टार्ट करे मतलब गिरावे मांगे क्रैश करे मांगे है तो जो चार गो आदमी भैया हेल्थ रहा पकड़ के एक वो आदमिया के पकड़ के बानी से और दुई गो पिलोट जो प्लेनवा में रहा उस सब जाए के फ्लिक मोई से अबू धाबी में जाए के उतार दी से भैया और पता चलल है जोन हम लोग जोन पिलोट वा खून में लपथत रहा वो हमारा एक इंडिया के पिलोट है जेकर नाम है स्मिथ स्मिथ मचर हिंदी के इंडिया के है और वो जाए के सबके जान बचाई भैया कि कवाड़ी खोल दे से नहीं उपलेन नेक्स्ट दौर तो हो जाए और ओकर मारे में क्रॉप दबा दी से स्मिथ जाए के कि प्लेन वहाँ सबन हाईजैक कर मतलब कि हाईजैक कर ली से और इसराइल जाए के अपन खफेक फ्लिक्ट एक भी उड़ाई से प्लेन वा के लुन तुकल ले रहा भैया मजे प्लेन फिन मोई से चले लगल तो रिस्टक भैले ब्लैक भैले के जोन एगो कोव फिरो उतरहा उ कोक कोक फिरो जो रहा उ मांगत्रा प्लेन वा के ने स्टार्ट करे है वासन टेररिस्ट मेंस मार फान फ्लिक्ट है इस अन कोव फिरो फान ओमान एगो देश से वहां पर वहां के था और उ मांगत रहा जाए के प्लेन वा गिरावे एक अरबारे में नरेंद्र मोदी नेतालियाओ और का बोले हैं हमारे यानी कि अमेरिका के ट्रिम जोन है इंडिया के बहुत सबासी देश से सल प्रीमियर नरेंद्र मोदी और जाए के स्मिथ ने मच्छंदर के हिंदुस्तानी पिलोट जोन इंडिया के ओके अस्पताल में बेल करी से और बताई से कितना जनता के तू आज जान बचेले बाटे हमारा बोले हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी जैसे फहून है फॉरेनर द हिंदुस्तान से रेडियो ऐसे है गए हिंदुस्तानी रेडियो ऐसे इंडिया के पिलोट जन है उसका नाम है स्मिथ मचर और ये जाकर उतरा आदमी के जान बचाई से भैया तो आज वो पूरा दुनिया में एक सब गुन गावे है और वो बोले हैगा एक प्रोबेर्ड में लीफन तरह दर मार वेस्ट ओक दैट इन नीट ऑल द मेंशन कौन लात स्टेफन ऑल दिस ने मचर बोले है ओम स्क्रीप द फूलन दैट फ्लिक टेक ऑन डाइक फ्लिक नाम ही ना बसलोत है गोन द डोर फ्रॉम द कॉकपिट ओपनन बोले एक वर्क तक ओक geslagen बोले मार दी द डोर ओपन इदरिन kwam naar binnen. Pas als hier kwam de cockpit binnen, want overmeesterde de co-piloot en leidde het vliegtuig om een crash te voorkomen. Het toestel maakte een noodlanding in Saudische Tabuk. Het voorval in de Fly Dubai toestel dat onderweg was naar Tel Aviv wordt onderzocht. Volgens Israël wilde de cockpiloot het vliegtuig laten neerstonden. Or ze bolle hij gaan 9-11 mee. En toen een Amerikaan bijna september mee ooit een ding bolle voorkomen kan deze ga en aan die admission hè, John Indiaanse piloot hè, Smith, ik een naam ba, Smith, Macher, moest dat gewoon geraak en een aanval van een kokkoek. Piloot op een Fly Dubai vlucht heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen. Hij zei dit tijdens een videogesprek met de Indiaanse premier Narendra Modi. तो आपको ये अच्छा कहानी आपको हम जरूर बताते हैं और हमारा सूरीनाम के जो राशिस्ता भैया राशिस्ता है एक इंगी है और जाए के काकांग बोले आला कुली यंपा नेसी मुस्गवे भैया

अपरे इंगी कौंची बनाई से भैया बेनलांत में आज तलक झलवा झूले है और बोले कूली मुसगे ते इतना रसिसी से इस प्राक देश में हम लोग कैसे नाम में हुए हैं और हम लोग के रखेरिंग और रखेरिंग जो है एकर का बोले हैगा जेनिफर सिमोन के और ग्रेगरी रिसलान के अपन मुंह न खोले है हमारा जो हिंदुस्तानी है देना का फोर्स इतर जो है अधीन है परमेश्वर है और हिंदुस्तानी है कोई के मुंह न खोले है कि हमारा हिंदुस्तानी के ऐसन ऐसन बात जाए के सबन बोले वो कफरी भी भाई को दुकान का आगे बोले रहा आला कुली मुझे ना इंडिया तो ये सब बांध के इतना रसिस्ट इस प्रा का हमारे देश में हुए हैं लेकिन कोई मुंह ना खोले है और जाए के एकर बारे में खाली सोशल मीडिया पे फेसबुक पे सबन उनमिया गरियावे है मैं एक को अक्सी हुआ के रखे रहे श्री नाम में ना लेवे और हमारा भारत देश में देखिए भैया आज दुनिया के एक चिन्ह बन गए है जो ये आदमी करी से वायरल पे आज सबको होकर गुण गावे है कि इतना आदमी को जान बचाई से अपन जान खतरे में डाल के तो दोस्तों हम चलते हैं आप लोग को एक गीत सुनाएंगे तो गीत के बाद में अभी हम वापस तुरंत आ जाएंगे।

और एक रिमिक्स सॉन्ग था छू कर मेरे मन को पिया तूने और क्या क्या क्या इशारा के बातचीत हो रहा है।

हम चलते हैं दोस्तों, हम चलते हैं नीदरलैंड के धुआने धुआने कर भैया पाई से कौची बंदर के जीप मिलल भाई एक मिला लावत रहा और जाने ओके बोले ब्रल आम जाने सुरीनाम में जइयो जब बरखा बरसे है तब जंगलिया में सुना बाबुल हम लोग बोली तो मो ब्रल आप है भैया बरखा का चिल्ला तो नीदरलैंड के धुआने धुआने को पकेट पाई से भैया जहाँ ब्रल आप के बोले यहाँ बोले हैगा नीदरलैंड से धुआने धुआनीज है बोले इन पॉकेट में तकन ब्लादरन एर अंदर और खानिस मटेरियलन तुए तुम बिंदरन फन अन खुयाना ब्रिल आप ओके बोले अलुआता माकोनेली आन खत्रोफन सेंडिंग वास आई सुरीनाम भैया सरनाम से अफकोर्स तक रहा उका बोले ब्रिल आप के अब लकड़ी पकड़ी से कर ओझाई करे वाला चीज कोई पोस कर ले रहा भाई और चुका करियो ये इतना गोश मछली भी कहा है का तू ब्रिल आप के का बोले बाबुल के जीप जाइयो खाए बोले है तेज नीट बकेन वार ऑन द फॉर सेंडर द डील को ऑन द नीलन नीलन स्टीयर द डील को ऑन द नीलन वार द सम खबरई फॉर डेकोरेटिव ऑफ सेरेमोनियल दुल एंडन My Jibia Kunji Baya for het binnenbrengen van een beschermde dierlijke delen. Vergunning vereist die ontbrak in dit geval waarna twee tongbeenderen in beslag zijn genomen. कोनो जीप पोस कर ले रहा भैया जीप पोस ब्रासिलियन के सब पकड़ी से भैया सुरीनाम में भैया 20,515 अमेरिकन डॉलर अपन जूता में लुकवाई के एयरपोर्ट लगे रहा भैया और लेके ओके मांगत रहा ब्राजील जाए तो ओके पकड़ी से बोले तू काहे पैसा हुआ डल ले बोले ओमदास को तू एक दे हमार पैसा बसला कर ले रहा बोलो एक मारे लुकवाई बाटी है फरकलार दे बोले हम ना जाने कि $10,000 माखे में लेके जाए के बोले हम जंगल में सोना खोदेल बोले वही पैसा बोले हम लेके जाएला पिस्टल यात्रा फिया खुयाना ना ब्राजीलिया तो फरतरेकन और बताए द ब्राजीलियाँस फरदाखते इंटरनेशनल लुकहाफन आंखोदन तून है ऑफ द पिस्टल फिया गयाना ना ब्राजीलिया तो फरतरेकन बोले है बे En werd in de schoenen die bedrag gevonden. Volgende verdachte ging het om de verdiensten als goudsmid. Sonara, bole bhaiya. O bole hum nahi ki $10,000 maak le jai ke. De man verklaarde het geld in schoenen te hebben verborgen. Omdat hij, bole eerder in Guyana door de politie zou zijn beroofd. En vreesde dat dit opnieuw zou gebeuren. Ki Guyana bole skootu bole ook beroofd kort chukwa la paiswa ke. Bole ohik maane paiswa hoa lukwaai rahi. Na overleg van de officier van jullie werd de verdachte in verzekering gesteld. De zaak is later... Op verzoek van de verdachte buitenproces afgehandeld, waarna hij in vrijheid werd gesteld. तो गयाना के सिपाही के भी विश्वास ना भैया ये हु से बात अब देखो गयाना में एक 6 बरिस के लड़का भैया सेसिया रख यंग दूर खकाप इन गयाना 4 बरिस के लड़का के कटलीस के काट के मांढल ले बाटे ई बात हुए परिका में खुद गेली 7 रोज वहां रहले भैया सेसिया रख यंग वहां परिका में सबन काट दी से गयाना के बात हुए हैगा बोले हैगा एकर बारे में बोले को चिनुआ है भैया चिनुआ काट से लड़कवा के चिनुआ पकड़ के बंद करी से और बोले हैगा आइडेंटिफाइड एज द इवन इन चाइनीज इफेंग एन काओ है स्लाक्टोफर चिनुएक लड़का रहा फॉल्स द पुलिसी फॉर अ ब्यूरलैंड सुरीनाम वेयर द यंगन ऑफ क्वाट ओवरफील टोटले लोकाले टाइड इंसिडेंट में द फरदाखते इन से नेक गकाप्ट ओकर गटैया में काट दिया भैया द यंगन वेड में स्पूट ना द किंडर रीजनल हॉस्पिटल gebracht bij de aankomst constateerde een arts dat hij Reese was overleden लड़का के गटाई टू कटिए भैया तू लड़का भला कैसे बचेगा नानी बड़ी दुख के बात है सेस यार किन तो ये सब एक कंटेनर भैया जाको नेशन के बातचीत हुए सिकन है से सनाम के कंटेनर में बेंदी से हेल्प खुदन अंदर वेख नार जाको नेशन है इन परमारीबो स्टेक्टिंग फ्रिंडन जो नीदरलैंड में हैगा और स्टेक्टिंग स्वीटी मरीन एक बड़का कंटेनर में हेल्प खुदरा सब भर के और सुरीनाम पठाई सेगा और सुरीनाम में आ गए है बलांगरे के डील फन लैंडिंग इज बस टाइम फॉर जाको नेशन हाउस
જેમાં બહાંદલ તાફલ હે, ઓપરાસી તાફલ હે, મોનિટોરન હે, और दूसर में जिसे मटेरियल है गस्टेक्टिंग स्वीटी मरीन रिक्स एक स्पेसिफिक ओपन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम जैकोनेशन हाउस जैकोनेशन हाउस और बोले है गा एंड ही दार ऑन अ ग्रुप डील फॉर मी जिसे खुद ने फॉर जी कौन है फरसामल और बताई गई है और है गा और ऑर्गेनाइजेशन से बोले उ सब जाएगा अन हॉस्पिस अल्मेर एंड कैटरीना Comité uit Eindhoven, zei Gail Hetje-Johan. Daarmee is de container gevuld met brede verzameling van materialen die in Suriname gebruikt kunnen worden. Topbehoed het Chabate, die hier zijn medische stingen hoe ja hij. John Hamara Janta, hoe hap je hun ziek onheids nieuws op hulp eisen krijgen. De hulpactie krijgt binnenkort een volledig vervolg. 13 oktober opnieuw container geladen met loos aan de Passa Wijze Hoogweg 1 in Tiel. तो उत्तील से जाई हमारी जनता अब देखो यहां बताए गए है ओली प्रेशन डालन तो अंदर द हंड्रेड डॉलर और यहां पंपू पे उतरे है भैया परेशवा ओली प्रेशन से इस दूसदाग के अनसीनले गदाल और बोले सितंबर में नोक स्प्राके वास फन एन फ्लिंक स्टेकिंग द डालन फॉलो द बेरिक्टिंग फन एनालिस्टन फन एन मॉर्गन और बोले हैगा यहां पे होएगा जो मेरे ओस्टर में कॉन्फ्लिक्ट है ओकर बारे में से प्राइस चढ़ाए रहा ओली ओली लीफरेंसेस फनाई द Persische golf na genoeg op de niveau zijn van de voor conflict in de Midden-Oosten. Kibare mee. Oh ja, wat hij weet, een van de Amerikaanse olie kost $90.39. Daarmee zijn olieprijzen gedaald tot maar onder de $100. 20% van de wereldwijde olieleveranciers. Door de blokkade staan honderden olietankers al maanden vast. Daar komt bij dat er veel schade is aan de olieorganisatie. Een organisatie en gas. Gasinstallatie. Bolle Midden-Oosten mee. Ijagarwaka bedoen. Amerikaanse president Donald Trump. Ook een nieuwe voorstel. Crisis voor staken vuren. Is afgewezen, mensen. हमारी जनता आपको हम समाचार बस सुनाते ही रहेंगे फॉल्स फॉल्स साल्डो फॉरक्लारिंग फॉर लीनिंग ब्रिंग अमतनार इन सेल भैया एगो अमतनार है सुरीनाम में भैया ओके पकड़ के सब बंद करी से वो फॉल्स साइन एंड खसक्रिफ्त तक ले रहा एगो औरत है भाई अपन साल्डो ओवर फॉरक्लारिंग फॉर एन बैंक है बन खबर है ओम बे अंदर बैंक पर्सनलिक लीनिंग इन एसआरडी तक रहेगा फ्राउड करी से क्रॉस पॉलिसी नाम पकड़ के बंद करी से अपन सालों पे पॉजिटिव कर ले रहा और दूसरे बैंक पे गए रहा कर्जा निकारे फोकस पॉलिसी अंडरसुक है द फ्रॉड फॉल्स साल्डो फरक्लारिंग फॉर द बैंक इनगदीन बे अंदर फाइनेंशियल इंस्टेलिंग ओम डार्मी इन अनमेरिकन को फॉर पर्सनलिक लीडिंग एट अंडरसुक इज फर्दर नार फोर कॉमन की फरदाख्ता फॉर फॉल्स फरक्लारिंग सो हैवन gekregen van een man aan wie zij hier voor een bedrag van SRD heeft betaald onderzoek bij de director burgerzaken leveren echter opmerkelijke detail. To paisa nikare khar bhaiya isab ka kana kadade he bhiya fraud hua fraud aur kuch karna paave he hamari janta pyare pyare janta jo aapko hum yahan se aur aage ko sunate he lekin aap log ke ek geet hum sunayenge aur wo hai munni badnam bakandalit

0: मयूर मुन्नी कभी कभी बदनाम हो जा भैया, मुन्नी बदनाम हो गए है। आप लोग को अभी बताए थे हम कि इंडिया में जो इंडिया के पिलोट थे दोस्तों, और उसको मोती ने तान किया है, जिसके नाम है स्मिथ माचंदर, और वो अब ठीक जा रहा है। उसका तंदुरुस्ती जोन है सिकन है, इसमें मोती ने उसको यानी कि उसको तार किया है, और तार करके पूछा है कि कैसे आपका अब जा रहा है और कैसे बातचीत हुआ है। तो आपका वो इंटरव्यू छोटा रूप में आपको हम यहाँ से सुनाते हैं, बस सुनते रहो।
1: तबीयत कैसी है
2: सर? सब ठीक है सर, सब ठीक।
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, महामृत्युंजय का जाप सब दूर जा रहे हैं।
2: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, पर एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे। उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा मैं 17 साल से ज्यादा जुड़ा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ।

तो ये गस्प्रेक थे, यानी कि बातचीत हुए थे, यानी कि हमारा नरेंद्र मोदी ने तार करके वो पिलोट जो थे, यानी कि स्मित मच्छर जो सिकोन हाइस में है, जो फ्लाई दुबई के कॉकपिट में जो को पिलोट थे, उसको यानी कि घायल कर दिया था। फ्लिक्ट एक मात्रा यानी कि नेस तोड़ करे के बारे में आपको पता है, अभी उसके बारे में हम बताए थे दोस्तों। तो हम और आगे चलते हैं। हमारा सुरीनाम में भैया एगो बयार्द औरत है और बिचारी अपर फरियारी खा 20,000 पैसा ऐसे अर्दे बांकों से पेन करके लाई के घर में धल्ले रहा। एक आदमी आयल भाई बोले हम ईबीएस के बाटी आईली तोर मीटर चेक करे, बोले हम आईली तोर स्ट्रोम के मीटर चेक करे और गए लेगो नहीं नसीब तक यार के औरत के बार बतिया ले बातचीत हो रहा ईमेल बहुतर से स्त्रात में और ये शहर में है रास्ता तूफान हम जाने ला और जाए के घर में ही लंडवा के घुसेरी से और 20,000 पैसा ई बुढ़ीवा के नहीं नसीब तक यार के बुढ़ीवा के पैसा चुरा ले से मैया के। बोले दादा दी Zich als een EBS-medewerker die de meter kwam opnemen. Het slachtoffer had het geld enkele dagen eerder van de bank opgenomen om deze maand haar 80ste verjaardag te vieren. Bichari re bichari. तो ये हो गया है, बड़ा दुख के बात है। आपके घर जो आइए मीटर इतर चेक करे भैया, तब देख लियो पहले पास से बहिरवे पकड़ियो घर में तिलक के कोई के बलावे काम ना, वन मीटर बहिरे है घर में मीटर ना है ना बोलियो घर में। तो ये बात है दोस्तों, यहाँ से अपना समाचार को हम खत्म करते हैं। बताते शेल ब्रतुरर फ्रुखो फर्ट्रैक और गयाना एसिड काउंसन इन सुरीनाम। शेल जो हैगा गयाना के जो तेल निकालो तरह फ्रुख फर्ट्रैक कर दे वहाँ चल गए है और देखे हैगा तेलवा जाए के गयाना से आप सुरीनाम में निकारे में। यहाँ बताए गए हैगा स्टाल ब्रुक ब्लॉक जो रहा फॉर द ग्रोथ ओली फॉर गयाना फॉर सावन फरली शेल है कभी op het verkeerde moment. Bolle Hega, samen op 22 september tijdens de ROG Energieconferentie in Rio de Janeiro, Brazilië, reageerde op een opmerking van de Rijstaat Energie topman Jaron Rijstaat. Die stelde dat Shell Guyana een beetje te vroeg had verlaten. Samen noemde die beoordeling nog een understatement. तो ये बात है, यानी कि आतोम पाई बदंग और फोर्सेटर फॉर द कॉफर द कमिशी फॉर अंडरवेज। बोले फोर्सेटर स्काप हम जाइला कमिशी जो अंडरवेज, बोले हुआ कुछ होवे ना है। तो दोस्तों यहां तक था हमारा आदेश अविदेश की समाचार। जोनी नंबर वन है हमारा नाम सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार प्यार भैया दाम से सीकाल। हमारा प्रोग्राम हर मंगलवार के शाम को 6-7 बजे होता है, शुक्रवार के 6-7 बजे तक होता है और रविवार को दिन में 1-2 बजे तक हेराल होता है। बुधवार के भी सवेरे हम हेराल करते हैं। दुश्मन से आज का मिस्ट है नमो खुली दहरानी खान लैस्त्र। हम जाते हैं रिक्लामे की ओर। रिक्लामे के बाद आप लोग तार करके एक गीत को भी मांग कर सकते हैं।

काली तेरी चोटी है और भैया क्या क्या और है वातन हॉट हॉट हॉट हॉट नंबर फन ऑर्केस्ट्रा टैप रिमिक्स सॉन्ग के बात में जाए मुझे तुमसे है क्या है मोहब्बत है मोहब्बत।

मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत के बाद और क्या होता है। दोस्तों घड़ी को देखा जाए तो ट्विन तक मॉनिटर ओवर जीव जीव हो चुका है। शाम का प्रोग्राम है, 8 अक्टूबर हो चुका है और आपको हम सिर्फ रीमेक सॉन्ग ही सुनाएंगे। एक और हो जाए

और मुझे भी शराबी, मुझे भी शराबी बनाई दिया हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सूरत है, मुझे शराबी के बांध में चल देते हैं दिलबर निर्बर।

और तुमसे बात करने का दिल भर और डांस नंबर फन अलका याग्नि के बाद में हम जा रहे हैं नोरा फती के और एक डांस नंबर है जो आपको हम सुनाते हैं ओनली बाय रेडियो फोन।

और चुरा के दिल मेरा, और क्या हुआ, गोरिया की कहते हैं गोरिया चली, गोरिया के बाद में हम चलते हैं जरा हौले हौले।

और हल्ले हल्ले हल्ले मेरे जाजे ना हम तो और क्या है दोस्तों, तो तार किया है फिदा ने अपने जुनैद को अपने मोहब्बत का इकरार करते हैं। द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार जानू अलका नायकनी का मूवी के नाम है कसूर देखा जो तुमको, तो ख्याल आया जुनैद को। फिदा ने बहुत प्यार करके तार करके इस गीत को मांग किया है, आओ सुना जाए फिदा क्या मांग किया है। क्या गीत है

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगते हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो, सुनते रहो। खनी तरफान वहां सामा खनी दुख

0: मूवी मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा और हटाकर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना।
1: पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा।

0: Johnny.
1: It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आज नाचना जरूर।

0: राह है रहेरी, उसके बाद हम चलते हैं। क्या चलते हैं, कहां चलते हैं? रेडियो फाउंड में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ। और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shook Kerwal on the beat.
0: And beat.

0: तेरी गली
1: दिस इज ओनिश लखमंजी
0: होगी।
1: मार फंडा खवालीन मार रीमिक्स रीमिक्स ए रीमिक्स। पर्दे में और रहने दो, अगर जब पर्दा उठा देंगे तो क्या दिखला देंगे। देखा जाए

रमदा योगी, रमदा योगी के बाद हम और कहां जाते हैं, और कहां जाते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

प्यार प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टेरिक तो बेंस और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप मत चलना, नहीं क्या होगा, छतरी लेकर चलना। और छैया छैया के बाद हम चलते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना चाहिए, हम बताते हैं क्या करना चाहिए।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए, चाहे आपकी परदेसिया यहां हो दनहाग में, अमस्टरडम, इत्रे, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। This is Johnny number one's prime time.

परदेसिया परदेसिया इन परदेसिया परदेसिया अब क्या होगा दैट इज अनफर।

और अनीसी अनीसी अनीसी और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह अरेंजमेंट से और होते हो पेज कभी किसी को चूम नहीं लेना किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत के ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला जीना, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

और दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यागनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारा चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगे। और नैतिक लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आजानी से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

होते तो आज हम आप लोग को दो टॉप सिंगर्स का प्रोग्राम हम सुनाएंगे और वो है यानी कि द टॉप सिंगर्स फ्रॉम इंडिया द टाइगर ऑफ द इंडिया कुमार शानू का गीत और एक बगल है अलका याग्निक का गीत। कुमार शानू के साथ अलका याग्निक के गीत हम चलाएंगे और फिर से उसके बाद हम चलाएंगे और वो है मोहम्मद अजीज का लवली हिट सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं मोहम्मद

और दोस्तों जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तरह से है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आका यागनी कुमार शानू के उरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरी ग्रीन कुमार जानू एंड अलका यागनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक स्कीट, आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहाउस के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ नफेटा फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो।

यहाँ से हमारा आज का प्रोग्राम जो है कुछ मन्ना दी और किशोर जी का गीत हम आप लोग को सुनाएंगे कि कहते हैं मानता है नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मानता ही नहीं कमबख्त दिल, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पड़ जाती है। हमारे यारो तो हम चलते हैं परमाश्री मनादी की ओर और चुनरी में दाग कब लगते हैं जब अगर आप कुछ करते हैं तो लगते हैं ना।

और हमारे यारो लगा चुनरी में, और चुनरी में दाग कब लगते हैं आपको तो पता होना चाहिए, और दिल ही तो है। राज कपूर मनादी, और इसमें मनादी का फिल्म के नाम है दिल है तो है, निखत द्रिय सस्ता का ये फिल्म है। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और मनादी के बांध पे हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और कहते हैं ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, वो भी बेकरार रहे जिसने बेकरार किया है। तो हम चलते हैं, मूवी का नाम है अंदाज, 1971 का ये फिल्म है, जिसमें माला सिन्हा राजेश खन्ना ने काम किया है, और किशोर दादा का ये सॉन्ग है।

और जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी एक सफर क्यों होता है दोस्तों, जब सुहाना होता है। मूवी का नाम है अंदाज 1971 का ये, और ये फिल्म है। तो हम और आगे को चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। तो और क्या है, जैसे कहा है किशोर के बाद में हम चलते हैं और परमाश्री मनाडेई के ओर की कहते हैं, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुश नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम जाते हैं कि अगर हमारे गीतों में हमारे टूटिया हो तो हमें क्षमा करना दोस्तों, लेकिन हम जाते हैं प्यार करने वाले को लिए कि जोहरा क्या कहते हैं।

0: साहब या तुम भी तकल्लुफ करने लगे, बड़े अफसोस की बात।
1: खाना वाना तो होता ही रहेगा, महफिल कब गर्म होगा?
2: महफिल भी जमेगी तो जल्दी रख।
0: दादाजी आज तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा।
2: अरे परमवीर यार, अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात।
1: और तुम बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं हुआ। सुनाओ, नखरे मत करो। ओ भाभी जान।
3: जी भाईजान।
1: हो तुम्हारा शोहर बुढ़ा हो गया था, हम इसको जवान करता है।
2: अच्छा, लक्ष्मी सामने है तो मैं जवानों का जवान।
0: लो सुनो।

और मेरी जोहरा जबी फिल्म वक्त का ये गीत है। तो कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं रात कली में क्या आते हैं दोस्तों, जो सपने आते हैं तो क्या आते हैं, रात कली में किशोर दादा ने आते हैं।

और मुस्लिम को तस्लीम अर्ज है, और हमारे हिंदू को प्रणाम। दोस्तों कितनी खूबी से हमारी और यानी परमा श्री मन्नादेवी ने और इस गीत को आपको सुनाए है यारो। उसके बाद हम चलते हैं किशोर दादा की ओर। अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, अब जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर ए आम रख दिया है। तो किशोर जी क्या कहते हैं।

बड़ी मुश्किल सी ये दिल मेरा दिल नी ठड़प की। और किशोर दाना ने इस गीत को सुनाए हैं तो कहती है बड़ी मुश्किल से इसी खुशी नसीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है। किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम चलते हैं अगला जोंग की ओर। हमारी दोस्तों लता जी, नैतिकी लता जी और परमाश्री दादा हेमंत दादा मन्ना दे का ये सॉन्ग आपको सुनना चाहिए।

और दोस्तों आपको पता चले और मना डे के बाद हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे। कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, एक प्यार भरी सॉन्ग आपको हम यहाँ से सुनाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे, और यहाँ पे मना दी क्या कहते हैं,

तुमने अपनी आवाज वाली को पाल, तुम्हारी खोई हुई स्वर्ग में वापस मिली। हाय आज देवी माँ से कुछ और भी मांग ली थी, गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बहार गाओ।

का ये और आम लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बांध से बड़ी बांध हो जाते हैं, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बांध वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

लिबास क्यों रेशम पहनो कपास क्यों फन ये जादूगरी का है अरमां तुमको परी का है तो किपला मारो मंत्र टेटी बनकर निक...

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: अरे जाम, तो ये बात है दोस्तों।
2: हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत, आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ अफिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर मैं थी मुकेश, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सब घर से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खस्की ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बीस हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा, पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकटी तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। तीन दिन से ही फिर कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की ऊपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

ये भी रफ़ी साहब आशा जी कारवा में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। कार्यक्रम आप पेश है तो लीजिए इस तरह से।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, ये शानदार गीत हम आपको तो सुनाए हैं फिल्म स्वयंवर में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। आशा जी है फिल्म हमसाया ओपी नैयर के साथ।

अच्छा जी, आपको सुनाए ओपी नायर के साज पर फिल्म हम साया में से निकाले हैं ये शानदार गीत। चलिए ये गीत बहुत दिन हुए शायद आप भी नहीं सुने होंगे, एक दूजे के लिए।

एक हिंदी में गा रही है और एक तमिल में बोल रहा है, तो मुश्किल तो अवश्य पैदा होगा। आपने सुने ये शानदार गीत हमने पेश की।